ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर पांच मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। सात बजे हिंदी में समाचार, सात बजकर पांच मिनट से लेकर नौ बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह नौ बजे प्रस्तुत करेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। दस बजे हिंदी में समाचार, दस बजकर पांच मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक का लुफ्त उठाते हुए सुनिएगा कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11 बजकर 5 मिनट पर बॉलीवुड की अपडेट्स देते हुए पेश करेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। बारह बजे हिंदी में समाचार और 12 बजकर 5 मिनट पर सुनना ना भूलिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर एक बजे से दो बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगत बीसी युनियन मिनिस्टर्स आर पीजेपी रूल स्टेट्स र किसुमान चीफ मिनिस्टर्स दि नागालेण्ड चीफ मिनिस्टर निफिरियो बिमलागिना सेरेमनीति जुग लबले आसे सेरेमनीतु रवीन्द्र जयन्ती लगा अफसारी राख्या कारणे कल्चरल पर्फमेन्स कान्ट्रि प्रोग्राम लगा भागते थाकिबले आसे युनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बा हन्डा भाइरस केसेस लगा लो ग्लोबल रिस्क एसेसमेन्ट थाकिया समयदे बच्चा प्रख्या सेभिलेन्स गार्डम खान उठाई दिसे खबर पर कैसे कि क्रूज शिप एम वि हन्डियास दि हन्डा भाइरस इन्फेक्सन लगा केसेस थाकिया लोक जरि अविस्ता दि हेल्थ मिनिस्ट्री बा मनिटर करि आसे इतुदो नेशनल सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल इन्टिग्रेटेड डिजीज सर्भेलेन्स प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन और दोसरा इन्टरनेशनल हेल्थ अथरीटीज लगत मिलाइना करि आसे खबर पर कैसे कि इंटरनेशनल हेल्थ रिकुलेशन फ्रेमवर्क नीचे डब्ल्यू एच ओ पर प्रिलिमिनरी जानकारी भाग कर हिसाब दी हंड भाइरस इन्फेक्शन लगा सब मिलाई आठटा निचिना केसेस तो वेसल्टी रिपोर्ट कर जोन टू पर पांचटा केसेस लैबरेटरी कन्फार्म और तीन मरिया खबर कर घटना ऊपर डब्ल्यू एच ओ लगते यू माहिना पहला सप्ताह जाना दी इतना अवस्था थकिया कारण एन सी डी सी नीचे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑपरेशन सेंटर पर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग सीनियर ऑफिशियल्स मिलाई अवस्था और प्रिपेरेडनेस काम सरकार कैसे कि डामासिक एल पी जी सप्लाई तो देश दी जारी रखी आस्ट्रीब्यूटर शिप्टी कमती हवाला खबर कर इंटरमिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग नई दिल्ली कठाकुरी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सुजादा शर्मा पर कैसे सरकार व डोमेस्टिक कन्ज्यूमार्स गैस कमती हम ना दिखेना वेस्ट एशिया लगा अवस्था थकिया समय प्राइसेस कान ठीक हिसाब रखी काम कर डायरेक्टर मिनिस्ट्री अफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अभिश कुमार शर्मा पर कैसे सरकार व सब स्टेक होल्डार्स सामिल कर जहाज दे सब इंडियन लगा सुविधा रखी और नारखीकना मेरीटाइम अपरेशन जारी रखी आ
1: All Indian seafarers in the region are safe and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. The ministry through the Directorate General of Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported.
0: मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगा स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल पर कैसे सरकार गल्फ दे देश कान लगते खबर लय थी आदल भाग हिसाब फरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री यू ए दि जा थर्सडे ऑफिशियल विजिट जाए और तीन दिन रखा वर्कशॉप कम हेकाथन तो एजेंटिक ए आई सक्षम दे पी एम ओशा निजे दे मे सात तारीख कोहिमा साइंस कॉलेज ऑटोनोमस लगा ऑडिटोरियम जत्समा दी शुरू कर प्रोग्राम तो सी ए पी ए पी एल डॉट इन लगते पार्टनरशिप दी जरूर कर जोन तो ए आई इनोवेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाई दी नागालैंड सबसे पहला किस्म इनिशिएटिव एक आसे वाइस प्रिंसिपल के वि लोनियो नाकेब्रा इवेंट स्टेट कारण कामयाब हिसाब जाना स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर इनोवेट कर मन ठाई दी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फर रोजा और पी एम ओशा सिंडियांग पोंगन कैसे नागालैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा फील्ड नेशनल मेन स्ट्रीम सामिल हो जाए और स्टूडेंट्स सुविधा जिम्मेदार बल चला अनुरोध कर आज फुजुर लगा खबर इमान शेष कर सामसात बजी दस मिनट नागामीज खबर आनी दी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित

0: मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सविंदर अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जाँच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम

0: दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी

0: समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाए, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Well, my dear listeners, if you have just tuned in, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रागोबन 103 MHz और मैं हूँ आपके साथ RJ Veronica. यहाँ पर गुड मॉर्निंग RJ.

नमस्कार लिसनर्स, दुर्गेश नागिनपुरे, राधे श्याम नागिनपुरे, वंदना भवना बिंदु गोलू कुसुम्बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार दक्षे, सूरज वर्मा, ऋषभ खनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा, सभी हमें गुड मॉर्निंग और नमस्कार बोल रहे हैं। तो आप सभी इतना प्यारा परिवार को भी हमारे तरफ से और सभी लिसनर्स की तरफ से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्कार। सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप भी जुड़ चुके हैं हमारे इस प्यारे से सेगमेंट में। तो यस माय डियर लिसनर्स, तो अभी जो गाना था कोको जंबो, क्या मस्त नॉस्टैल्जिक वाइब है, राइट? कुछ गाने सिर्फ गाने ही नहीं होते, वो यादें भी बन जाते हैं। स्कूल डेज, यू नो, पुराने दोस्त, फैमिली गैदरिंग्स, टेंशन फ्री लाइफ, सभी याद आने लगते हैं जब हम ऐसे वाले गाने सुनते हैं, है ना? तो चलिए इसी फन और नॉस्टैल्जिक मूड को कंटिन्यू रखते हैं एक और सुपर हिट ट्रैक के साथ। हियर आर द वेंगा बॉयज विद केस।

0: pin yi hui gam na ko chathang mang aw mi khem nai
1: ai lo ko athang mang chun chunoi gan gum chi athang ami chak ashan go
0: nong him yam na nagran s control society an apung ro cha
2: Well, my dear listeners, welcome back after the break. Or yes, Durgesh Naginpure likh rahe hain. RJV, main to abhi dance kar raha hoon ji. Durgesh ji, bahut badhiya, aise hi nachte rahiye kyunki aaj ka gaana kuch aisa hone wala hai na, kuch jadoo hone wala hai yahan pe kyunki aaj ka jo gaana main bajane wale hoon, सभी को भी पता है क्योंकि ये पुराने वाले गीतों से तो बहुत ही बढ़िया वाला जो यादगार बन जाता है वही वाला फीलिंग आपको ज़रूर देने वाली हूँ मैं ऑलराइट एंड यस वी आल्सो हैव अनदर मैसेज हेलो माय स्वीट आरजे गुड मॉर्निंग एंड टू ऑल द लिसनर्स एंजॉयिंग द शो एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे थैंक यू इट्स मी Choppy Brothers, Edmund and Ato from Nagato Town. Well, my dear Choppy Brothers, Ushkim Tevanye. Well, I hope you are also having a beautiful day out there. And I'm sure you all know the song, so aji dolop dance to kurilubi, alright? Anyways, we also have Hi RJ Veronica. If love had a sound, it would be my mom calling my name. I miss you, mom. Happy Mother's Day in heaven. And advance happy Mother's Day to all the mothers in the FM family. Thank you, I'm enjoying your show. I'm so sorry, Lonnie. It's so difficult, you know. I have similar experiences and I totally understand what you must be going through right now. But what to do? Life has to go on, right? So embrace yourself a little tighter this morning. Just give yourself a hug and, you know, say a small prayer. No matter, even if your tears fall, it's okay. Let it be. Let it go. And I hope that you take care of your heart as well. And pray for every one of the mothers that are alive, alright? Yes, my dear listeners. If I say or search kahun to, you know, 90s or early 2000s ke gaana, gaano ki baat, की ही कुछ अलग है ना फन कलरफुल यू नो केयर फ्री बस म्यूजिक एंजॉय करो और खुश रहो ऑलराइट अब अगला गाना भी उन्हीं आइकॉनिक ट्रैक्स में से एक है जिसे सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है सो यस माय डियर लिसनर्स गेट रेडी फॉर सम फन वाइब्स विद एक्वा एंड बार्बी गर्ल ऑन एफएम ट्रैगोबान एट 103 मेगाहर्ट्ज
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump.

Well, my dear listeners, there's a message that wrote, take it to Brazil, enjoying this morning, having fun. Goyena dinaze, well, my dear, apuni lagan nam hi likhi diya nai do, how will I know you? Next time, please don't forget to mention your name, all right, my dear? Thank you so much. And yes, Carolyn Yantan from Lakuti is also enjoying the music and having fun. Well, my dear Carolyn Yantan, I am really sorry itia to ami khan laga request program no hoy, okay? So I am sorry I won't be able to play your requested track. And yes, we have another message. Good morning, Shairi aa chuka hai, my dear listeners. Always from our Durgage, the Divana, alright? Pani ki boonde phoolo ko bhiga rahi hai. Thandi lehre ek taazi jaga rahi hai. हो गए आप भी इनमें शामिल एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है गुड मॉर्निंग आपके पसंदीदा गाने लगातार एफएम ट्रागोपैनिक 13 मेगाहर्ट्ज पर वेल दुर्गेश जी यही तो है सोने पे सुहागा यू नो आपका ये जो शायरी है ना हमेशा लिखते रहिएगा कभी बंद मत कीजिएगा ऑलराइट और ये वक्त बहुत तेजी से भागता जा रहा है एनीवेज दोस्तों गेट रेडी टू स्माइल बिकॉज द नेक्स्ट सॉन्ग इज प्योर फन एंड प्योर नॉस्टैल्जिया द काइंड ऑफ ट्रैक दैट विल इंस्टेंटली make you wanna dance or you know imagine that I'm standing next to you and you know pulling everybody you know how we have parties you know somebody starts dancing or ek jun bike jun ge tanina dance kurle kure na itu nishna kure se babi all right this is a Macarena by Los Del Rio

Well, my dear friends, I am sure most of you are enjoying those beautiful tracks. Well, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक शायरी फिर से आ चुका है. रात गुजरी, फिर महकती सुबह आई, दिल धड़का, फिर आपकी याद आई. आंखों ने महसूस किया उस हवा को जो आपको छूकर हमारे पास आई. गुड मॉर्निंग लिसनर्स, बाबू दिव्यांश और वंदना नागिनपुरे, वाह वाह सारा परिवार, वाह क्या शायरी लिखते हैं आप लोग. दुर्गे जी, बहुत बड़ा सलाम है आपका. जो शायरी लिखने का अंदाज है, मुझे तो प्यार हो गया इस शायरियों से. एनीवेज, वी ऑल्सो हैव अनदर मैसेज, और वक्त चलता ही जा रहा है. वी ऑलरेडी हैव ओनली अराउंड 6 मिनट्स ऑन द क्लॉक. आई डोंट नो वक्त कितना जल्दी चला गया है ना. हेलो, गुड मॉर्निंग अजी. तो पेशी बहुत ही गर्म है, फिर भी गाना तो सुनेगा क्योंकि इंग्लिश गाना अच्छा अच्छा बजा दिया. कैसे थानू इंगटी फ्रॉम होलोंगी तेरोंग अरोंग अरुणाचल प्रदेश ईटानगर पर लिखी गई नदी ऐसे. वेल माय डियर थानू, एटे भी अजी तो अलग तो गर्म अजे, बट गरम दिन ही भाल ऐसे हो कि त्या बाद ना बेसि पानी गिरिले भी मनो अच्छी लगी जाए, बीमार सीमार भी बेसि ऊल्ई जाए. तो आज तो सानोला ऐसे गरम हुई भी एक्सरसाइज करी ना, डांस करी करी ना गाना तो सुनी थकबी. ऑल राइट माई डियर फ्रॉम अरुणाचल, दैट वॉज अ वेरी स्वीट मैसेज. इवन इफ इट्स हॉट, ही इज एन्जॉइंग हिज लाइफ. सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट लाइफ इज शॉर्ट. तो थोड़ा लूसन अप करो यार, टेंशन नहीं लेने का देने का. राइट, एंड यस, नेक्स्ट गाना भी प्योर नॉस्टैल्जिक वाइब लेकर आ रहा है. दिस इज अराउंड द वर्ल्ड.

यू सो मच लिखी ना पठा दिया कारण और इतने आपको दूसरा मेसेज आक लिखी ना पठा से माइ नेम समयना बसुमती सॉन्ग नेम इज टुडे ओके थैंक यू सो मच समयना लिखी ना पठा दिया कारण अपनी तो नेक्स्ट गाना आपको शुनब अपना यशर देसाई लगा से फिल्म से उजरा चमन और यू गीत लिखा देवशी खंडूरी और म्यूजिक दिया गौरव रोशन

से परिवार का जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप दुकान पे हो, कहीं पे भी हो, उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन बड़ा ही प्यारा जाएगा आज का, ठीक है। ऑल राइट, वी हैव अनदर मैसेज राइटिंग। गुड मॉर्निंग आज वेरोनिका पे ये थोड़े चाली भी थोड़ी खोके शला। नी वेज हैव अ नाइस डे टू यू। इट्स आर वेरी ऑन देयर मिस्टर अकर्स। सो अकर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड माई बडी। सो आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। Peje ho, all right, yes, and we have around 6 minutes left on the clock to say goodbye, but I'm not leaving you without, you know, giving you good songs. So this the next track coming up, this is Nothing's Gonna Change My Love For You, and this song goes out to all my dear you, my dear listeners, from me to you. Nothing's gonna stop or change my love for all of you, my dear listeners.

0: sensitive breast, painful breast, a bit bikaina komor bikawo gumba ina la pishia se makikando.
1: तो एटु मेंस्ट्रुएशन सुरु कुरिया टाइम दे आम खान किने गा महान गा खाव तो हिले देखभाल कुरु बोले लगे
0: मोहन पारादक अलप खा लवा दे मैनेज कुरा द फॉर एग्जांपल अमियन इनी आउटसाइड ब्रा पहाड़ बार रेस्टोरेंट कम ब्रा खा लो ऑर्डर कुरी ना भी खाई ना ये दुकान नो कुरी ना पर तक होममेड फूड खाओ लगी वो ये तो टाइम दे आरो कुरुम कुरुम खाए भात खान खाई दे भाल ना आरो अमियन बिशी मैं की क्रैम्स उलावो आरो पिकावो गाओ दे ना ये दुकान टाइम दे हीट थेरेपी ना मुहान हॉट वाटर बैग कन भी चलावो पारे बो नहेले बिशी पिकाई शुली तो मुहान दवाई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन कन भी किनी ना खावो पारे बो पेन बार रिलीफ खाओ लेना आरो कपड़ो तो पारा जा कंफर्टेबल टाइट पैंट्स खान टाइट कपड़ो खान लगाए ना कंफर्टेबल पैंट्स कंफर्टेबल क्लोथिंग लगाए ना पारा तक मन बॉडी तो कंफर्टेबल कोई ना रखी पारे ना आरो अमियन पारा तक रेस्ट बेशी एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव वर्क न करेगी ना टेक इट अ लिटिल लाइट स्पेशली एक दिन थकी वो चुंड वाला डे दे बेशी पीरियड तो हैवी हो ना ये दिन दे तो अलग आराम पर थकी ले भाल ना आरो रेस्ट लुबी कोई ना एकदम घुमाई थकी थकी बोली लाभी न है ना अलग तो करा कोई ना अलग एक्टिव कोई ना पिराई ली भी भाल इना हुई ना बिकॉज़ अमीन पेट बिखाया से कोमर बिखाया से अलग हिला हिली कोई ले आराम पाई रे इधर बार भी ऐसे यारों माथा बिखाई ली भी अलग हिला हिली कोई ले भाल ऐसे आरो मोहन स्किन ब्रा ऑयल प्रोडक्शन तो बिशी हाई हुई ऐसे ना इधर टाइम दे अमीन ला क्लेंजिंग भी अमीन फेस थोला भी बिशी होशियार कोई ना थोला वो लगे ना सो अमीन पर तक माइल्ड क्लेंजिंग एजेंट्स हली ना फेस थोला वो इधर बीच रे मोहन पानी पर तक खावो इधर पानी खा दो तुई तक किस्म हो वो एक ता दो अमीन ला बॉडी दो वजाइना दो मोहन सेल्फ क्लीनिंग आ सुधो सेल्फ क्लीनिंग क्लीनिंग एनवायरनमेंट ऐसे तो मान की पानी खावो पिशी वाला टॉक्सिन्स तो फ्लश आउट करेगा ना अलोंग विद योर पीरियड इधर एक लगी नो है ना मान पानी खा दो स्किन भी पिशी रिफ्लेक्ट करे दो सो इधर बड़ा पानी खावो लगे इधर पिछे दे परिशील दो पीरियड थकिया ला दिन की दो मेकअप फ्री चाहिए भाल ना कि लिए मैंने अमीन ला स्किन दो पिशी ऑयली भी हुई जाए तो अमीन ला स्किन पर भी ब्रीथ कर दी लगे ना तो अपनी बेसि मेकअप लगाया से अलग ड्यूरेशन ऑफ मेकअप तो अलग कुमती कुरी ना अलग मेकअप फ्री रखी दिली भाल हो ये बीच अमियान खा लो अलग बैलेंस डाइट ना पिछे ऑयल भी नो पिछे फैट्स भी नो है कोल्ड हॉट इट ऑल्सो बैलेंस कुरी ना खाओ लगे वो इना हुई शरीर तो मोहन पिछे आराम पाओ
1: আমাখন বেশি মানুহ বাৰ জানি থাকিব পাৰে হলি বি আকৌ বেছি বি এইটো খান তো নাজানি কিনে থাকিব পাৰে এইটো বাৰ এইটো মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন আমি খান পিৰিয়ড যাৰ নাম দিয়ে কিনাৰা চাফ চাফা ৰাখিব আৰু কিনাৰা কৰি কিনে আমি খান লগা চেনিটেৰী নেপকিনছ খান হলি বি ডিচপ'জ কৰিব এইটো খান লগা ওপৰত বি শ্বেয়াৰ কৰি দিলে বেছি খুচি হ'ব
0: হয় কেতিয়া মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন ক'ব ক্লিনলিনেছ নাম্বাৰ ওৱান তে আহিব দে ক্লিনলিনেছ আৰু এইটো আমি আলা বডি ক্লা নহয় না ডিচপ'জেল सेंट्री नैपकिन फिला लगा तक भी थकी वो सो अमियान ला बॉडी सही शिली दो बिशी मुहान ला कस्टम्स कुंबा कस्टम्स दो माइकी कान पीरी जैसे गाउन थला भी ना इना भी हुए अबनी भी होनी चाहिए ना नहीं ना जाने ली भी गाउन थला भी इना भी मुहान ला बॉडी टेम्परेचर तो बेस बेसल बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन करी भी ना कोई ली भी इना भी नो है ना मुहान ला बॉडी भी क्लीन रखी वो लगे ये ला ऊपर मुहान ला चिनिटल एरिया भी क्लीन रखी वो लगे ना अमियान इधर कुरान बने नहीं ना इन्हीं अलग लुक वन मॉडल ब्रा थोड़ा वो लगे ना इधर ब्रा इन्फेक्शन भी बिशी कुम्ती होगा इधर एक लान नहीं ना अमीन की त्या थोड़ा वो इधर टाइम दे मुहान कपूर सफाई एक तालु ही ना इधर थोड़ा इसे अंडरवेयर रे पैं से सैनिटरी नापकिन हाली की ना इन्हीं उठाई ना लगाई शी ना नहीं ना अमीन ला चिनिटल एरिया प्राइवेट एरिया तो कपूर ब्रा उल्लू क्लीन कपूर ब्रा मुशाई की ना सफा आरो सुखा जगह दे है पैंटी लगाओ लगे ना और अमियान कितने अंडरवेयर सबो अमियान बिशी वाला इनी लाइक टाइट अंडरवेयर नोले इनी कॉटन नोइना दूसरा फैब्रिक्स कान बिशी चलाए ना इधर नोइना अमियान ला अंडरगार्मेंट्स तो कॉटन हो लगे और इट शुड बी ब्रीदेबल फैब्रिक तो बिशी हवा पास कुरी वो पर्याय लगा ना इधर ब्रा अमियान इरिटेशन ब्रा इनी बिशी रुखाई रे ना और अमियान कितने सेंट्री नैपकिन को वो इधर अमियान बिशी वाला आई डोंट नो अपनी दिखी ना दिखे ना लिबी कॉलेज खांदी जैसे आरो पब्लिक जगह री जैसे अमियन सैनिटरी नैपकिन तो चुलाई से इन्हीं फिलाई रे लो डस्टबिन दे लिबी इन गान नो ही ना आजकल तो रैपर लो दिबी आहे ऐसे इधर पंडी की ना आरो parishudi tu paper kamra pandi na itu close dustbin na khula noi na close dustbin di philai di wala ye ina ina jodi apni municipal body thagya laga jaga ekta di jaya se thagya se di do apni itu sanitary napkin to phal ba pandi na paper ali wrapper kamra pandi na garbage truck di dihli phal na aru itu paratak polythene de pandi na ni dihli phal ho na yena ina ina amyan itu garbage disposal truck de dihli phal ho wa aru jodi apni ekta jaga de ase municipal body nai town de ko ko garbage phila la jaga de nai ase di do apni itu mui dimapur thagi ase na dimapur de bishi jaga de lo ini bira time de maiki khan la menstruation pad to na khun jama ha gri na side side ni philai gina ko ta babi lui na pirai na bishi litra thaki re ina nui na apni municipal body de diwo na pare shili do side ikta de kundu manobra bishi na pungchi uli la jaga ikta re dispose of gribi in fact I would say july dili bhalo because july dia he sobse bhal lage na because sanitary napkin bishi de biodegradable no hoy sal sal thousand thousand sal bi ni itu thaki bu na environment de aro itu biodegradable asili to bishi mehenga bi hui jai na affordability bi hui jai na to ameng itu ini philai di shili to environment bi bishi impact kore na ere karne ami han ini na philai gina julai di hili bhalo na ye aro sanitary napkin do ini kida ini philai de ami han la mucus ami han la cell ami han la khun sob jama gri na ami han la biological waste sob jama gri na menstruation la pat di asudo na itu do moist environment asudo kila kila asudo na itu bra bacteria pishu la wo aro itu bra infections kan pishu wo na ere kan hepatitis no hele bi ni other bacterial pathogens kan bishi spread gri na itu bra itu inara na philai le phalo wo kwanishina municipal bodies ki dili pal no krishli do july dili pal obo de aro kumba maki khan do kapor hi july na ajikali ajikali takpi kapor july ina asuri do kapor do anything and everything no hina cotton kapor july li pal obo aro kapor july do bi sapha litra oishi bia oishi phila bole ase kono la chama gurna philai dibo ina no hina cotton kapor breathable kapor ekta na itu aro bishi manu do because of financial burden amyan sanitary napkin bi kini wona pare gina kapur hi julai na idu kapur ro iku noi re chula bi li bi thulai gina sabun phal ba hali gina phal ba thulai na san de sukai di wola ge san de gira sukawa amyan la germs aro bacteria sob morai de na inaka pa aro sukai dia bi chi de aro dubara chula wola ge
1: period aharam de sab safai bhal ba na rakhia karne bi idu health risk kan bi bishi thagi bo pare do idu han bi olop shob bi dile bishi khushi hobo
0: sabse dangor risk to amyan la reproductive tract infections na RTI ko idu amyan period jar ange saf saf aina thaka karne idu bi infect kore mane example gila gila de amyan thagi ase na kunja ase back change kurana bishi diri samai neli do amyan laga private part to lai she libi ni nasukai nai pandi bi aro napkin bi bingilu she idu ekdam moist na hawa na pas nukura laga aro ekdam gila gila jaga ekta hui je shiro ina waraim de ini fungal infection kan bi bishi hoi UTI kan bi urinary tract infections kan bi bishi hoi na aro idokan kitia mohan dekpal bhal ba nukuribo pachab no bukya la tak bi hui jai na aro kumba maiki kando mui nijo la sukuba bi dikishire puisa na thakya karne sanitary napkin kando example stay free care free kan bishi spotting nok really do bi tholai sala bi dikhi bai sina itu ase de do itu do aro bishi bia itu bra bishi infection bi hui jabo na because kiman bi suka wo na itu bra itu nok really phal aro fungal infection thagibo mohan change kurana yali na aro kumba brand kan especially maiki kan bishi karne brand kumba kumba bra do bishi rashes bi diwo na ami karne bi ekta brand ase itu kida chulabo bishi rash ulai idu rash ulala do good sign no hina idu asob do mohan dikpal kuribo lage idu phal ba dikpal korana yali do age jai jai gena UTI shuru kuribo na noi shidi do fungal infection is shuru kuribo yeast infection is nai shuru kuribo phal ba na sai shidi do PID pelvic inflammatory disease na idu kuri kuri na do mohan la pelvis area sobte mane uterus aro ovaries idu han tubes idu sobte effect kuri na jabona idu huina kumba chaka gan dido cervical cancer bi hui jai na ida karne ma la menstruation cycle to bishi important ase idu ikla noi na health kida go psychological and social impact bi thage na mohan idu du kotha no koe Will be. I mean, school jalem jedo because mala uniform do white

0: नमस्ते जगत सर।
1: नमस्ते बलकोन मुंडा ना? हम हो गए
0: GAYE
1: थकी दे हम अरे तो किले न वाले हम आपके दिल में हम हो गए आपके ये तो तुम नहीं दे ये तो नहीं
0: अगर तो जाती लेती है लेकिन वैसा ना रहना ही
1: चाहिए हम हो गए आपके ये तो फिल्म तो नहीं हो था कि लेतु क्या ना हम आपके है कौन ये तो जासे
0: कुछ ना था क्या रिफ्यूजी है ना
1: रिफ्यूजी तो ना था क्या नहीं सीधे यार एक बार साइज आओ ले मुझे refugee नहीं वो यहाँ लोग तो refugee तो नहीं
0: देवदास है ना
1: देवदास ताज़े
0: तारे पर बजट
1: देवदास होय नो तू नो लाज़े पुरना भी ऐसे
0: इधर 2002 साल लगा था किसी पे उठा
1: होय देवदास इतन 2002 लगा से होय कुंतु वाला बजाओ ऐ दे
0: जैसे एक
1: बार कभी बाइरी पिया दोलेरा दोले दोला रे दोला हमेशा तुमको चाहा कहे छेर महे ना मार मार दला मोरे पिया सिलसिला ये चाहत का वो चांद जैसे लड़की इन्हें कहाँ से गाना गाते हो तो कौन तो बजा वो
0: अरे मस्त अभी मुझसे दस्ती करोगे ये तो यार बड़ा सही बात ये तो लास्ट तक ये तो लगा रहता
1: कि फिल्म लगा नाम क्या से
0: हाँ हाँ मुझसे दस्ती करोगे
1: मुझसे दस्ती करोगे कौन तू गाना लगे तुझे
0: ये तो ऐसे सावली सी एक लड़की
1: ओके ये तो बजाई दी वो
0: हाँ ये तो क्या बजाई
1: ठीक है से बजाई दी वो
0: তারপিছতে ডেডিকেশন আছে অমল বসুমতারী বিমল বসুমতারী যোগেশ নাগানপুরী
1: ওকে
0: রমেশ পাত্র অরুণ পাত্র সুকিন্দার বংশে সুভাতে জামি বীরেন হংসে
1: ওকে
0: সীতা রং ফার সুনিতা বসুমতারী অঞ্জলি বসুমতারী ধনঞ্জয় আর যিমান জন এতিয়া শুনি আছে সব রেগুলার লিসনার্স খান আর সব আর্টিস্টকে
1: ওকে থ্যাংক ইউ
0: আপনি কবি ডেডিকেশন থাকিব
1: ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাইকন মুন্ডা আপনি কল করে দিয়ার কারণে দে
0: ওকে
1: থ্যাংক ইউ ওয়েল লিসনার্স কান আকো হুনিব আপনার লোকে উদিত নারায়ণ লাগা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে মুঝসে দোস্তি করোগি

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ हेलो,
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: ओके प्रेम सिंह जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे। आकाशवाणी
0: ओके
1: नागालैंड का मैं नियमित होता हूँ, कोई
0: ओके,
1: ना
0: थैंक
1: सुनता हूँ
0: यू थैंक यू। तो आज कौन से
1: जी।
0: गाना सुनना है आप, कौन से मूवी का?
1: फिल्म का नाम है अर्पण
0: अर्पण।
1: जी हाँ, और गाना के बोल है लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई। जी
0: अर्पण देखता हूँ मैं।
1: हाँ, ये

0: लता मंगेशकर की आवाज में है, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में है दोनों ये गाना मतलब सर।
1: अर्पण तो हम लोग को पास नहीं है ना क्या मेरा ख्याल में?
0: अच्छा तो फिर इसका अर्पण नहीं है आपके पास में, तो एक मिनट में बताऊँ आपको। चांद से महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने कब सोचा था, ये गाने के बोल है और फिल्म का नाम है
1: बताए।
0: फिल्म का नाम तो सर मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त।
1: फिल्म का नाम नहीं बताएगा तो मैं ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।
0: जी जी तो मैं दूसरी बताऊँ आपको फिल्म। हाँ। गीत फिल्म का सुनवाइए आप।
1: गीत?
0: हाँ
1: गीत तो है, कौन से गाना सुना? हाँ। आपको
0: जिसके सपने हमें रोज आते रहे।
1: ये महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का आवाज में?
0: जी बिल्कुल, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में गाना है। 1970 में ये फिल्म आई थी।
1: हाँ
0: जी हाँ, काफी अच्छी फिल्म है ये। और आपको बताओ अभी आपके यहाँ मौसम कैसा है सर?
1: मौसम अभी यहाँ भी गर्म चल रहा है थोड़ा थोड़ा।
0: जी यहाँ पे तो मतलब 43 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है। हाँ। एसी कूलर को छोड़ने का मतलब मन ही नहीं कर रहा, बस घर में बैठे रहो आकाश में सुनते रहो, और मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि काफी गर्मी है।
1: हाँ वहाँ बहुत गर्मी होगा मुझे पता है, क्योंकि वहाँ ठंडा कमती है ना उधर में तो ना।
0: हाँ जी बिल्कुल, और उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर मतलब आपको बताऊँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करके जाते हैं।
1: ओके ओके थैंक यू। तो किसको डेडिकेशन करना है ये गाना?
0: जी सबसे पहले आप ही को डेडिकेशन देगा, उसके बाद में आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी, आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी, आशुतोष अभिनय संगीता जी, भगवान सिंह परमा, लोकेन्द्र वर्मा, सुनील झा भोपाल से हैं और रमेश टेलर है।
1: ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हाँ
0: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: ओके थैंक यू सो मच, ठीक है।
0: ओके बाय
1: बाय। लिसनर्स का नीतिया होनी वो अपने लोग महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर लगा हुआ फिल्म से गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। कैसे
0: नमस्कार नमस्कार,
1: हैं आप?
0: मैं ठीक ही हूँ।
1: अच्छा, तो कोहिमा का भी आज आजकल हाल चाल क्या है? मौसम कैसा चल रहा है?
0: मौसम आज तो बहुत अच्छा है, गर्मी चल रहा है
1: अच्छा,
0: थोड़ा।
1: गर्मी तो है, धूप बहुत कड़ी धूप खिला हुआ है।
0: ओके
1: जी जी
0: ओके। अच्छा,
1: और
0: आज कौन
1: मैं
0: से मूवी का सुनना है आप?
1: जी जी तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ यहाँ।
0: हाँ, त्रिपुरा से हितेन। क्या आपका नाम क्या था?
1: अविनाश
0: अविनाश तेली ना।
1: जी।
0: ओके अविनाश जी, बताइए कौन से गाना सुनना है आज, कौन सी फिल्म?
1: आज मुझे सुना दीजिएगा, मूवी का नाम रहेगा क्रोध।
0: क्रोध।
1: इसमें गाना है, कहाँ गए ममता भरे दिन।
0: क्रोध, ओके। क्रोध ही नहीं ना, क्रोध ना।
1: हाँ, क्रोध, क्रोध, KROD।
0: अच्छा, KROD तो हम लोगों पास नहीं है ये गाना, क्रोध का। तो
1: अच्छा, तो फिर आप को नहीं मिल रहा है तो आप सुना दीजिएगा। अच्छा, माँ मूवी होगा, माँ।
0: माँ, माँ तो हो सकता है, माँ मूवी है। हाँ,
1: है।
0: लेकिन दो गाना है इधर में,
1: हाँ,
0: मैं
1: तो कौन
0: जंगली
1: सा?
0: राजा और एक ओ ऐसी कोई बात।
1: अच्छा, तो फिर अब कोई बात नहीं है, तो इसमें से कोई भी सुना दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि आपको एक श्रोता का कॉल वो भी लेना है।
0: हाँ, ठीक है। तब
1: ठीक
0: तो
1: है। अच्छा
0: मैं ये ओ ऐसी कोई बात वही सुना देगा।
1: अच्छा ठीक है,
0: ओके
1: सुना लीजिए। तो मेरे साथ है रमेश प्रजापति जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और
0: ओके
1: प्रेम सिंह जी हैं, और राकेश जी हैं,
0: ओके
1: और भगवान सिंह जी हैं, केसर सिंह जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, और अभी जितने तमाम सुनने वाले हैं, अमल भस्माचार्य, सबके लिए दिल से प्रणाम।
0: ठीक है, ठीक है।
1: ठीक है,
0: क्योंकि
1: ओके।
0: कल मदर्स डे है,
1: हाँ हाँ
0: इसका वजह से आप दे रहा होगा।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी जी
0: आपको।
1: बहुत
0: ओके
1: बहुत धन्यवाद। और गाना दे, 2-3 मिनट सुना दे तो हो जाएगा, क्योंकि
0: हो
1: बहुत
0: जाएगा।
1: आदमी
0: ओके
1: का। हाँ बिल्कुल
0: ओके
1: बिल्कुल,
0: ओके,
1: ओके, एक कॉलर ले लीजिएगा।
0: ठीक है ठीक
1: ओके,
0: है,
1: ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। लिसनर्स का नीचे होली वो अपना लोग लता मंगेशकर और किशोर कुमार लगा वास्ते फिल्म से माँ।

0: सर मेरा नाम पूरन वर्मा है।
1: हाँ पूरन जी बताइए।
0: मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का अंजुमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
1: ओके अच्छा कौन से मूवी सुनना है आजका गान?
0: जी सर फिल्म का नाम है जाल ट्रैक।
1: क्या जाल
0: ट्रैक?
1: जाल
0: ट्रैक फिल्म का नाम है जाल ट्रैक और गाने के बोले हम सफर के लिए हम सफर मिल गया।
1: ये तो नहीं है हम लोग के पास जाल ट्रैक का तो।
0: नहीं मूवी नहीं है आपके पास?
1: ये नहीं है अभी मूवी, ये मूवी नहीं है हम लोग का।
0: तो फिर मूवी का नाम रहेगा फुटपाथ।
1: फुटपाथ? फुटपाथ भी हम बोल दिया था अभी तक अपलोड नहीं हुआ है।
0: अच्छा अभी नहीं सर आपका कंप्यूटर बिल्कुल खाली पड़ा है, गाने डालो इसमें सर बढ़िया बढ़िया और भी गाने डालो।
1: हाँ ठीक है डालेगा लेकिन अभी नहीं डाला है, बता दिया एक दिन भी आपने मांगा था फुटपाथ ना, हम उसको अपलोड करने के लिए बता दिया था।
0: जो बेबपा सनम?
1: क्या
0: बेबपा सनम?
1: दो दफा
0: नहीं बे
1: बेवफा सनम।
0: यस यस
1: बेवफा
0: सनम।
1: हाँ बेवफा सनम कौन से गाना सुनना है इसमें?
0: उसमें गाने के बोले मुझको ये तेरी बेवफाई, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, ये गाना है?
1: नहीं ये गाना तो नहीं है वो, मुझको ऐसा तो नहीं है बेवफा सनम में।
0: तो इसमें कौन कौन से गाने हैं बताओ सर।
1: वफा ना रस आए तुझे
0: जी जी
1: ना, ओ ये मेरी अम्मा
0: जी जी,
1: और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का
0: जी,
1: ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा
0: जी,
1: जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं
0: जी,
1: और ये देखो देखो प्यार की धोखे
0: जी,
1: जिंदगी बस सजना दया प्यार
0: जी,
1: तेरी गली विच्छों लगे लगेगा जनाना जादू
0: जी।
1: इतना है गाना तो कौन से सुनना है आपको?
0: तो फिर वो सुना दीजिए दो के प्यार के, तो किसी से कोई प्यार ना करे
1: दो।
0: हाँ दो के, ये दो के
1: कौन से बोला? ये धोखे प्यार
0: कैसे
1: के धोखे ना। ठीक है किसको डेडिकेट करना है ये गाना?
0: ये सबसे पहले तो आप है।
1: ओके
0: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता वो कार्यक्रम हमारे लिए सजा के लाते उनके लिए।
1: ओके
0: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है और गोल्डी बाई है, अमर साव है और कोयमा के कॉलर धर्मवीर और तमाम श्रोता जो आपके कार्यक्रम आकाशवाणी कोयमा के श्रोताओं के लिए। सर ये कार्यक्रम 1 बजे तक जारी रहेगा ना सर?
1: हाँ 1 बजे तक रहेगा
0: क्योंकि सर आप जब आप आते हो ना तो हम को पता पड़ता है कि सर आप 1 बजे तक कार्यक्रम करते हो, तो आपके लिए धन्यवाद सर।
1: ओके थैंक यू। ठीक है समय भी चल रहा है इसलिए हम आप न्यूज हेडलाइन के बाद आपका ये गाना बजा देगा। ओके
0: थैंक यू सर।
1: ओके थैंक यू।
2: FM Tragoban 103 MHz News, Music and Entertainment. This is FM Tragoban FM 103 MHz.
1: Good afternoon, this is Akashvani Kohima, the news headlines. 18.8 acres of land occupied by Assam Rifles Training Center and School handed to Airports Authority of India for development of Dimapur Airport. Dimapur Municipal Council directs all meat vendors within its jurisdiction to strictly maintain hygiene standards and operate only from authorized market locations. Dimapur Police solves kidnapping and extortion case registered at East Police Station last month with the arrest of 2 accused persons. Government says 3 Jan Suraksha schemes, which completed 11 years of providing social security cover, have reached 94.5 crore rupees in cumulative enrollments. India's ornamental fisheries exports are estimated at around 41 crore rupees, reflecting the sector's growing contribution to the economy. Standoff over the Strait of Hormuz intensifies after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Prime Minister Narendra Modi offers tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of Pochishe Boishak.

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: ओके रमेश जी, बताइए कौन सी फिल्म का गाना सुनना है आज?
1: क्रोधी फिल्म है क्या?
0: क्रोधी नहीं है,
1: स्वर्ग से सुंदर।
0: क्रोधी क्रोधी देखेगा, मैं देखा था आगे में। क्रोधी तो है लेकिन सब गाना नहीं होगा मेरे ख्याल में। क्रोधी में एक तो गाना ही है सिर्फ,
1: स्वर्ग से
0: चल
1: सुंदर है क्या?
0: स्वर्ग से सुंदर।
1: हाँ,
0: स्वर्ग से सुंदर तो होगा, स्वर्ग, हाँ स्वर्ग से सुंदर है।
1: तो वो ही है, स्वर्ग से सुंदर है अपना घर द्वार। वो वाला गाना सुना था। वो
0: कौन से वाला? अपना
1: स्वर्ग से सुंदर
0: घर है स्वर्ग से सुंदर ना,
1: है। हाँ, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। हाँ, वो
0: ठीक है बजा देगा।
1: जी। और हेलो,
0: हेलो बताइए बताइए। हाँ
1: लाइट ले लिया ना? तो
0: हाँ हाँ
1: मैं मित्रों को बात कर लूँ। तो
0: हाँ जल्दी जल्दी कर दीजिए। ओके
1: भाई को मुंडा है, अमर सिंह साहू है, पूनम जी
0: ओके
1: है कानपुर से, गोल्डी जी है, अमन भस्माकारी है, विमल
0: ओके
1: है, राकेश है शिमला से, अविनाश जी है, पूर्णिमा जी है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, और भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा है, गजराज मोदी है, केसरी सिंह राजपूत है, वो धर्मवीर है दिल्ली से। धन्यवाद।
0: ओके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
1: ग्रेट, थैंक यू, धन्यवाद।
0: लिसनर्स का नित्य होनी वो किशोर कुमार और आशा भोसले लगा वास्ते फिल्म से स्वर्ग से सुंदर।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ठीक है, और तो बताए, समय भी जा रहा है इसलिए फटाफट बोल दीजिए। कौन से फिल्म का गाना सुनना है आज?
1: फिल्म का नाम है आंखियों के झरोके से। हमें वो चौपाई दोहा सुनना है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल।
0: कौन से फिल्म बोला? फिल्म का नाम
1: आंखियों के झरोके से,
0: आँखियों के झरोके
1: झरोके से, उसमें दोहा या चौपाई है सर, वो सुनना है हमें। नहीं
0: से गोली मारे, ये
1: नहीं ये
0: आँखियों
1: नहीं
0: से
1: सर, आंखियों के झरोके से फिल्म का नाम, बहुत पुरानी फिल्म है।
0: आ ये तो
1: तो
0: नहीं है हम लोग के पास।
1: सर आंखियों से गोली मारे का सुना दीजिए,
0: कौन से गाना सुनना है इसमें से?
1: और बताइए कौन सा गाना है इसमें।
0: ओ चोरी गोरी गोरी,
1: जी
0: आँख तो आँख जो तुझसे लड़ गई रे।
1: जो तुझसे लड़ गई रे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई रे, ये वाला सुना दीजिए।
0: ठीक है, सुना देगा।
1: और विमल भस्माचार्य और अमन भस्माचार्य जी, और शिमला से राकेश जी, पूरन वर्मा जी, गोल्डी भाई, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, पूनम दीदी कानपुर से, अविनाश तेली जी, और जो भी दोस्तों का नाम भूल गए सभी को डेलीकेट रहेगा सर, आपको भी रहेगा।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है,
1: धन्यवाद सर।
0: ओके, धन्यवाद आपको भी। ठीक है,
1: जी
0: well, listeners can program says kubla time was it in a program says to you up look ki Sonu Nigam aro Jaspinder Narula laka was tasty film say akyo se goli mare aro to git logote program to says kuria hobo kintu homoy ek baji holoke apni kan huni hobo FM

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरूआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि

सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नॉटी बिल्लो। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे ये सॉन्ग दिलजीत दोसांझ और नक्श अजीज की वॉइस पे, फिल्लौरी फिल्म से। और मैं बता दूं आपको, प्रोग्राम शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा मेरा वाला सॉन्ग एफएम रेनबो आकाशवाणी दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज़, आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंड वेल, जैसे कि है मेरा वाला सॉन्ग, तो डेफिनेटली आपकी सारी सभी फरमाइशों को हम लोग पूरा करने वाले हैं। आप अपनी फरमाइश हमें अपने नाम अपने मैसेज के साथ लिखकर भेजेंगे दोस्त, और उन सभी फरमाइशों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे कहाँ भेजने वाले हैं हमें फरमाइश, आप भेजेंगे 9868107070। SMS कीजिए हमें और

जी बिल्कुल, दिल का रिश्ता ही तो है जो हमें और आपको बांधे हुए है। कहते हैं दोस्त की जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए। अजी अगर यही समझ में आ जाए जिंदगी का फलसफा तो जिंदगी आसान ना हो जाए हम सबके लिए। वल आसान और किए देते हैं, चलिए आपके मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। ये हमारे पास मैसेज आया है, सबसे पहला मैसेज हम लोग लेने वाले हैं पहले और उसके बाद हम लेंगे दूसरा मैसेज। सबसे पहले आया है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से। गुड आफ्टरनून जी, इन्होंने गीत संगीत कार्यक्रम बहुत अच्छा है और कोई भी गीत FM रेनबो पर हमारा नाम शामिल कर दीजिए। तो लीजिए जी, कर दिया हमने। और ये राहत और गजल कह रहे हैं नेहतपुर बिजनौर से, इश्क मूवी का कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, एंड नेम नौशाद चौधरी, माय सन मोहम्मद अकरम चौधरी, मूवी नेम प्यार किया तो डरना क्या, सॉन्ग नेम ओ ओ जाने जाना, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी। हर हर गंगे बत्ती गुल मीटर चालू, जय जय महाकाल, गुड बॉय प्रवीण चौहान, खरगोना मध्य प्रदेश से। ओके जी, एंड आप सबको मदर्स डे के एडवांस में बधाई। अच्छा जी, एडवांस में ले लीजिए आप भी। लुका छुपी मूवी का सॉन्ग आजा शाम है मुझे तेरी फिक्र है, ये वाला गाना हमारे सभी रेनबो के लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और मनोज सिंह लाजवंती गार्डन न्यू दिल्ली से ये बोल रहे हैं, ठीक है सर। और मदर्स डे की एडवांस की जो बधाई है वो भी हम स्वीकार करते हैं। गुड आफ्टरनून आरती जी, कैसे हैं आज, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पैडमैन मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए, आज से मेरी सारी गलियां मेरी, आज से तेरी सारी गलियां मेरी होगी। कंचन यमुना प्रसाद दिल्ली से कह रही हैं, सोनिया बिहार से। और ये कौन है हमारे दोस्त, जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा से तहसील से कह रहे हैं, माई नेम इस नरजीत ठाकुर, वाइफ रत्ना देवी, ये दुआ है मेरी रब से, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। वल वल वल, हमारी भी दुआ है कि आप सभी के साथ हम यूं ही बने रहे। आई लव यू मूवी का सॉन्ग हमारे किसी लिसनर से सुनने की, सॉरी आई लव यू मूवी नहीं है, बॉडीगार्ड फिल्म का आई लव यू सॉन्ग है आश किंग की वॉइस में। हमारे किसी लिसनर्स ने इसकी भी फरमाइश की थी, तो फिलहाल तो ये उनके लिए।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

भाई जिंदगी में आप भी हमारे चले आइए और जिंदगी को खुशनुमा बनाइए और आप हमारे साथ रहते हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी एंड मेरा वाला सॉन्ग। और ये हमारे पास मैसेज है लक्ष्मी अरविंद निशा प्रमोद एंड मम्मी पापा का, जो कह रहे हैं ग्राम ठुंडा से, लकी नो टाइम फॉर लव, जान मेरी जान रही है सनम। ओके, बिल्कुल कोशिश करेंगे एंड थैंक यू मम्मी पापा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाओ शोभा बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ कह रहे हैं फिल्म प्रेम रोग एक दूजे के लिए इस गीत की फरमाइश की है। सुनीता शर्मा शालीमार बाग मूवी माचिस का छोड़ाए हम वो गलिया। अरे सुनीता जी कहाँ थी आप, आपको तो ढूंढ रहे थे हम। चलिए गुड आफ्टरनून दोस्त, वेलकम बैक सौरभ बनेजा। दोस्त मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, मैं तो बस शो इंजॉय करता हूँ। ओके सौरभ, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आप हमेशा इंजॉय करते हैं सॉन्ग और लिख के भी भेजते हैं। गुड आफ्टरनून जी, फिल्म का नाम दीवाना, गाने के बोल सोचेंगे तुम्हें प्यार करे या नहीं, सलीम अख्तर और रेशमा बेगम अलीगढ़ से ये कह रही है हमें मेरा वाला सॉन्ग। सबसे पहले आपको शुभ दोपहर, हमारी एक फरमाइश जरूर पूरी करिएगा। गाने के बोल है तुझे ना देखूं तो चैन मुझे नहीं आता, फिल्म रंग से कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में इन लोगों ने ये सुनना चाहा है और बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। और फिलहाल रेखा भारद्वाज की वॉइस में बर्फी फिल्म से फिर ले आया दिल, ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी एंड इसको मैं प्ले कर रही हूँ डेफिनेटली। और उसके बाद फिर देखते हैं हम किसकी फरमाइश पूरी करते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कहते हैं दोस्त की जिंदगी के भी अलग ही चैप्टर हैं, एक को समझो तो दूसरे के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही तो है जिंदगी, अगर इतनी जल्दी समझ आ जाती तो फिर बात ही क्या थी। कभी धूप कभी छांव, कभी खुशी कभी गम। और देखिए कितने सारी खुशियां हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही हैं, इतने प्यार से आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं। शुभ दोपहर रेडियो सखी आरती जी, सब प्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। ओके जी, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। देखिए मैंने बहुत सारे जितने सारे गाने अभी तक प्ले किए ना, सब में आपको शामिल कर लिया है सर। मैडम जी आपको धर्मेंद्र कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और मैं अभी आपको इसराइल से सुन रहा हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से इशलागंज का रहने वाला हूँ। मुझे एक गाना सुनवा दीजिए, हम है इस पल यहाँ, जाने कल हो कहाँ। ओके धर्मेंद्र जी, एंड फिर ले आया दिल बर्फी से, ये हम सुनवा चुके हैं। दोस्त राजीव रावत जिरकपुर पंजाब से आपने ये फरमाइश की थी, आपका नाम भी ले लिया है। एंड राजेश शर्मा ख्याला से कह रहे हैं आप लौट चले मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके एंड भगवती हमें कह रही हैं कि आपको नमस्कार, फिल्म साथिया का सॉन्ग सुनना है चुपके से लग जा गले, और या फिर उन्होंने दो तीन चॉइस दे रखी, चेन्नई एक्सप्रेस, स्प्रेड मैन, रोग। ओके इन सभी में से कोई भी आप सुनवा सके तो। नमस्कार मैम, मैं भी प्रोग्राम आपकी डेली सुनता हूँ, मैं मनोज कुमार रघुवीर नगर दिल्ली से, हमारे कल साथी सिलाई का काम करते हैं और प्रोग्राम के मज़े भी लेते हैं। ओके सिलाई का काम करते हैं हम, जैसे रामू राठौर, मनमोहन राठौर, सुमित राठौर, रामजी शुक्ला, दीपू, विमल माथुर, अंकित राठौर, रामकिशोर ठेकेदार, अर्जुन राठौर, इन सभी की पसंद का एक गाना अच्छा सा सुनवा दीजिए। स्वीट, देखिए जो सारे गाने मैंने सुनवाए ना डेफिनेटली आपकी पसंद के होंगे और आपने इसे इंजॉय किया होगा, बढ़िया सी सिलाई कीजिएगा। हाय मेरा नाम प्रांशु पटेल है, शकरपुर दिल्ली से, अगर हो सके तो पिंड

खुशमाल फ्रॉम मिशन कश्मीर, ओके, एंड सैयारा मूवी का सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है खुशी कर्नाटका से बोल रही हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। अजी मैंने आपका मैसेज शामिल भी कर लिया था और शायद फरमाइश भी सुनवाई है। गुड आफ्टरनून आरती मैडम जी, आज के कार्यक्रम में किसी भी गीत में शामिल कर लो, नाम भी शामिल हो गया जी आपका। एंड एंड एंड एंड एंड और कौन कौन से, ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन भी ना ऊपर नीचे भागने शुरू कर देती है आपके, इतने सारे मैसेजेस की बाढ़ आती है। आरती जी नमस्कार, फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, ओके, मीठी आवाज़ के साथ तेरे नाम फिल्म तुझसे मिलकर गाने को अलका एंड उदित नारायण ने गाया है, सुनवा दीजिए, थैंक्स, हैव अ ग्रेट वीकेंड। रवि जोशी मेरठ से बोल रहे हैं। चलिए फिलहाल अब देखते हैं किसकी फरमाइश पूरी हो रही है। लकी नो टाइम फॉर लव, जहाँ मेरी जा रही है सनम, इस गाने को सुनना चाहा था। और पता है क्या, चीटिंग नहीं करनी है, जिसका भी फरमाइश पूरा होता है ना फिर मुझे थैंक यू मैसेज जरूर करो, ओके, मैं नाम भूल जाती हूँ। चलिए सुनिए इसको।

0: बेहद खूबसूरत गीत, फिल्म का चाहे जो भी हाल रहा हो दोस्तों, लेकिन गीत बड़े मजेदार थे इस फिल्म के। एंड भाई वक्त हो चला है, देखिए ना चलता चला जा रहा है टाइम, और मैं फटाफट आपकी और फरमाइशें ले देती हूँ। कोमल चंद साहू फिंगेश्वर छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं मेरे जीवन साथी सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके एंड एंड एंड एंड आज रेल दिवस है, ये कौन कह रहे हैं हमें गीत, दोस्त गाड़ी बुला रही है और हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से कह रहे हैं सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित यादव, नमिता एंड कार्तिक यादव, आज रेल दिवस है। ओके जी आपको मुबारक हो। आदाब, गीत कब तक चुप बैठे, कुछ तो है बोलना, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फरिया ताहिर, इन सभी ने ये फरमाइश भेजी है। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन शांति नगर सोनीपत से ये अभी भी कुछ टाइप कर रहे हैं। एंड प्रेजेंटर जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, ऑन आर रिक्वेस्ट काइंडली प्ले द सॉन्ग, कहते हैं हम कसम आतिश फिल्म से, मिस्टर आशिक, दो तीन इन्होंने फरमाइश भेजी है मेरे को और अभी भी ये टाइप कर रहे हैं, आपका नाम ले चुकी हूँ मैं। ओके आरती जी, मेरा मैसेज आ नहीं पहुंचा क्या, ओ ओ ओके, मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, गुड आफ्टरनून आरती जी, मोहम्मद इम्तियाज, फिल्म DDLG, दिल तो पागल है, कयामत का, दिल का रिश्ता से कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। मोहम्मद साहब मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। जैद और हुडा गाजियाबाद से विश्वात्मा मूवी का सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं। फिर हमारी दोस्त हैं राहत और गजल नेहतपुर बिजनौर से, देखिए बार बार आप फरमाइश करते हैं ना, मैंने आपका सुनवा चुकी हूँ। हाय हाउ आर यू मूवी हिना एनी सॉन्ग, रजनीत मस्ताना रायबरेली से ये हमें कह रहे हैं हमारे दोस्त। एंड हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, तेरे नाम का सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके एंड यमुना प्रसाद दिल्ली से, सोनिया विहार से ये कह रही हैं हमें। साथ ही गुड आफ्टरनून आरती जी, फिल्म कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। साथ ही हमारे दोस्त हमें क्या भेज रहे हैं ये, गुड आफ्टरनून टीम, खुद्दार मूवी का सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है, मोहम्मद रागिब रेजा, दानिश खान, तौसीफ आलम, इन सभी ने। We hadn't expected that you would play today our request, but you did. So thanks a lot. Oh, that's so sweet. देखा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं किसी के request play करती हूँ ना, तो please मुझे thank you एक बोल दिया करो ना, क्या जाता है पता है, अच्छी अच्छी बातें बोलने से फिर काम करने का बढ़िया बढ़िया मन करता है। Thank you लक्ष्मी जी, आपने मुझे thank you बोला और आपकी फरमाइश मैंने की, and कसम से कह रही हूँ दिल से, हमारा बिल्कुल दिल करता है कि सबकी फरमाइशें हम पूरी करें, लेकिन क्या करें क्या करें, पाबंदी है समय की। और अब जैसे समय हो चला है और स्टूडियो में प्रकट हो चुकी हैं प्रियंका वर्मा, अपना सामान लेकर, अपनी खूबसूरत सा प्रोग्राम आशियाना लेकर, और बिल्कुल अब ये चाहेंगे कि मैं सीट छोड़ दूं, और बिल्कुल छोड़ेंगे अब उनके लिए। प्रियंका कैसी हैं आप?
1: बस बढ़िया आरती।
0: ओके एंड थैंक यू सो

मच शुक्रिया ओखला. ये रणवीर, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने सभी के नाम ले दिए हैं. एंड आई होप अगर कुछ एक आध रह गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा. तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्रियंका आ चुकी हैं. एफएम रेनबो पर आप सुनते रहेंगे कंटिन्यूस प्रोग्राम अपनी पसंद के, और लगाए रखिएगा दिल हमारे साथ, क्योंकि हमसे दिल लगाएंगे तो दिल से दिल का रिश्ता बना रहेगा. फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाज़त. नमस्कार, बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात ऐसी प्रोग्राम में एक और खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए.

एकला चलो रे सोलफुल थॉट वर्किंग एंड इमोशनल ट्रैक अभी आपने सुना प्रोग्राम आशियाना में. वेल ये जो ट्रैक है ना कहीं इनर स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है और ये गाना शोर मचा कर नहीं बल्कि खामोशी से अपना इम्पैक्ट छोड़ता है और ये कहीं ना कहीं जो पूरी मूवी है कहानी का उसकी इमोशनल हार्ट बीट भी बन जाता है. हेलो एंड नमस्ते इंडिया. इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में है एक छोटा सा जहां मेरा. मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना. किया इकट्ठा इसे चुन चुन कर तिनके. है तमन्ना की हर शाख पे इसके फूल महके और आए कभी ना इस पे खिजा. मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना. आकाशवाणी रेनबो पर यह प्रोग्राम आशियाना शुरू हो चुका है जहाँ मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ. गुड आफ्टरनून.

सीरियसली ये जो गाना है ना, ये कहीं ना कहीं एक शहर की बात नहीं करता बल्कि इंसान के अंदर के तन्हा सफर को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसमें एक अजीब सी उदासी है, एक ठहराव है, जैसे वक्त रुक कर कुछ कहना चाहता हो, इंट्रोस्पेक्टिव मूड है इस गाने का। और इसी गाने पे मैंने एक शायरी लिखी, बता मन में इतना क्लिक किया ये गाना और मैंने लिख डाली, बस थोड़ा सा तुकबंदी में कमी होगी लेकिन आपको सुनाना तो बनता है दोस्तों। इस दिल में बस कर देखो तो, इस दिल में बस कर देखो, ये शहर बड़ा पुराना है, हर सांस में छुपी यादों का एक खामोश अफसाना है, यहाँ वक्त भी धीरे से तन्हा राहों पे चलता है और हर धड़कन को किसी अधूरे एहसास का ठिकाना है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। खामोशियों में भी घर की कहानियां चलती हैं, जरा गौर फरमाइएगा, खामोशियों में भी घर की तन्हाइयां चलती हैं, पर बिन बोले फीलिंग्स थोड़ी सी अधूरी रहती है। बोल दो ना कभी कि तुम इम्पोर्टेंट हो दिल से, वरना अपनापन होते हुए भी दिलों में कश्मकश रह जाती है। दोस्तों घर सिर्फ एक जगह नहीं होता बल्कि इमोशंस का एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ रिश्ता बिना कहे भी समझा जाता है, पर शायद इसीलिए उन्हें एक्सप्रेस करना भी हम कभी जरूरी नहीं समझते हैं। रोज की भाग दौड़ में हम ये मान लेते हैं कि अपने लोग बिना कहे समझ जाएंगे, पर शायद इसी कम्फर्ट में हम कभी कभी अपने ही घर वालों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनके प्रेजेंस इतना नेचुरल हो जाता है, उनकी वैल्यू महसूस करना धीरे धीरे कम हो जाती है। पर सच तो ये कि हर दिल को कभी ना कभी लफ्जों की जरूरत होती है, यानी हर रिश्ता चाहे कितना भी अपना हो, लफ्जों की गर्माहट तो मांगता है। खामोशियां घर में अक्सर सुकून का एहसास देती हैं, लेकिन कभी कभी ये खामोशियां अनसेड बातों की बोझ भी बन जाती है। छोटी सी तारीफ, एक सिंपल सा थैंक यू और तुम मैटर करते हो, ये सब कह देना रिश्तों को और गहरा बना देता है। जब ये बातें रह जाती हैं तो प्यार होते हुए भी उसकी आवाज कम पड़ जाती है। साथ ही घर के रिश्ते में अनसेट एक्सपेक्टेशंस होती है, हम चाहते हैं कि कोई बिना कहे हमें समझे, हमारी फीलिंग्स का केयर करे, लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो बिना किसी शोर के एक इमोशनल गैप क्रिएट हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर वालों को अपनी फीलिंग्स, अपना अफेक्शन टाइमली एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों घर की असली कहानियां शोर में नहीं बल्कि इन्हीं खामोश लम्हों में लिखी जाती है। शायद जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपनी खामोशियों को थोड़ा सा अल्फाज दे सकें ताकि जो महसूस होता है वो कभी अधूरा ना रह जाए। फिलहाल ये बहुत ही सोलफुल ट्रैक है रूप कुमार राठौड़ की आवाज में, क्या मखमली आवाज है।

0: वेल दोस्तों जी के साथ हमें मैसेज आए हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड आफ्टरनून प्रियंका वर्मा मैडम जी, कार्यक्रम आशियाना इस खुले आसमान में जमी के आगोश में बहुत ही बढ़िया पंक्तियां हैं और गीत भी आपने बताया कि कौन कौन से गीत है, आपको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच पंकज जी। और इसी के साथ हमें रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर शुभकामनाएं। उनका कहना है कि प्रेम कभी कब्जा नहीं करता बल्कि स्वतंत्र देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिंदगी का आशियाना ही तो है, प्यार से गुजर हो यादों को समेट को हर पल को संवार लो। एक दोस्त रवि जोशी जी मेरठ, बिल्कुल आपकी जो शब्द है उसने सब कुछ कहा है। फिलहाल अभी ये एड ब्रेक है, वो आपसे कुछ कहेगा, तो चलिए स्टे ट्यून्ड।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रैक है ना, इंस्पायरिंग पेट्रियोटिक ट्रैक, जो देशभक्ति के जज्बे को दिल से महसूस करता है ना, एक सेंस ऑफ प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाता है। नेशन कम्स फर्स्ट का एसेंस पूरे गाने में रिफ्लेक्ट होता है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। तो चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। घर में सब कुछ था, बस लव्स कहीं खो गए। हम एहसास समझते रहे पर जज्बात अनकहे रह गए। दो मीठे बोल मिलते तो दिल यूं ही खिल जाता, वरना रिश्ते यूं खामोशियों की सिलवटों में सिमट कर ना रहते। घर में सब कुछ ठीक लगता है दोस्तों, रूटीन सेट है, जिम्मेदारियां बटी हुई है, हर कोई अपना रोल निभा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी खाली जगह महसूस होती है। ये खाली जगह अक्सर किसी चीज़ की कमी से नहीं, बल्कि एप्रिसिएशन के ना कहने से, एप्रिशिएट ना करने से बनती है। घर में प्यार होता है, पर उस प्यार को लफ्ज़ों में बयां करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला तो समझ ही रहा होगा। माँ का ख्याल रखना, पापा की मेहनत, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ घर का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। और जब कोई चीज़ नॉर्मल बन जाती है तो उसकी तारीफ करना हम ज़रूरी नहीं समझते, है ना। हम सोचते हैं कि ये तो उनका फ़र्ज है, उन्हें पता है कि अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सच ये है कि अनसेट अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन नहीं होती है। दिल को वो जो बात होती है वो तभी छूती जब आप सुनते हैं। जी हाँ, घर में घर के जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या होती है? अपनापन। लेकिन वही अपनापन कभी कभी एक्सप्रेशन को कम कर देता है। हम सब फील तो करते हैं, मतलब उन्हें अप्रिशिएट तो करते हैं, पर कह नहीं पाते, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें तो पता है। ऐसा होता है ना दोस्तों। बस सच ये कि जो कहा नहीं जाता वो अक्सर महसूस भी कम होने लगता है। माँ शायद एक सिंपल आज का खाना बहुत अच्छा लगा है सुनने का इंतज़ार करती है। पापा को भी कभी आपकी वजह से सब पॉसिबल है ना सुनना अच्छा लगता है। और घर के हर मेंबर को यह एहसास चाहिए कि उनकी कोशिशें नज़र आ रही हैं। पर कितनी अजीब बात है ना, हम अपने ऑफिस में या बाहर गुड जॉब बोल देते हैं, फ्रेंड्स को वाओ यू डिड ग्रेट, तुसी कमाल हो कह देते हैं, लेकिन घर पर ये लव्स रोक लेते हैं। शायद इसलिए क्योंकि घर को हम परमानेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि ये तो अपने हैं और ये ऐसे ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा। पर इमोशंस को भी कभी कभी रिकग्निशन की ज़रूरत होती है, वरना वो धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, साइंटिफिक लेवल पर बात की जाए ना, तो जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, जैसे थैंक यू बोल दे या यू डिड वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन जो है वो फील गुड केमिकल कहा जाता है, जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब एप्रिसिएशन एक्सप्रेस नहीं होता ना, तो ब्रेन को वही रिवॉर्ड सिंगल जो सिग्नल है वो नहीं मिलता, और धीरे धीरे मोटिवेशन और इमोशनल कनेक्शन कम होने लगता है। एप्रिसिएशन की कमी से कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, पर एक अनसेट डिस्टेंस जरूर बन जाता है। लोग अपना बेस्ट देते रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक सवाल करते हैं कि क्या मेरी कोशिशें नज़र नहीं आ रही हैं। जब हम किसी के जवाब का इंतज़ार करते हैं ना, यकीन मानिए वो जो एक तड़प होती है वो लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। जब किसी का इसका जवाब लफ्ज़ों में नहीं मिलता, तो जज्बात धीरे धीरे थकने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है। आप एक्सप्रेस कीजिए, एज्यूम थोड़ा कम कीजिए। जी हाँ, एक्सप्रेस मोर, एज्यूम लेस, सिंपल। रोज़ के रूटीन में छोटी छोटी लाइन्स ऐड कर लीजिए। थैंक यू, तुम्हारे बिना मुश्किल होता, आज तुमने बहुत अच्छा किया, तुम मेरे साथ थे ना, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। ये लव्स छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। ये सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि कनेक्शन को ज़िंदा रखने का तरीका है। बस ये कहूँगी, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने नहीं, रिकग्निशन का वार्म स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जब एप्रिसिएशन ओपनली फ्लो करता है ना, तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक सुकून भरा आशियाना बन जाता है, जहाँ खामोशियों में नहीं, लफ्ज़ों में भी मोहब्बत नज़र आती है। फिलहाल अभी जो नज़र आ रहा है ना, वो बहुत ही ये जो गाना है ना, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इन्फेक्शियस एनर्जी क्रिएट करेगा। ज़रा सुनिए इस गाने को, फिर बताइएगा ज़रा मुझे।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

धीरे धीरे वेल दोस्तों, ये गाना शोर भरी जिंदगी में सुकून सा महसूस कराता है ना। इसकी मेलोडी इतनी सॉफ्ट है, इतनी सोलफुल है कि पहली बार जब ये गाने को सुना था ना तो इससे प्यार हो गया था। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं घर वाले, खामोशियों में धड़कती कहानियाँ। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम का टाइटल है अनसेट एक्सपेक्टेशंस का लोड दिल छुपा चुपके से उठा लेता है। अनसेट एक्सपेक्टेशंस का लोड दिल चुपके से उठा लेता है। बिना किसी झगड़े के भी रिश्ता हल्का सा टूट जाता है, पर जब फीलिंग्स को वर्ड्स मिल जाएं और बात खुल के हो जाए तो वही रिश्ता फिर से हील होके और स्ट्रांग बन जाता है। घर आशियाना एक ऐसी जगह जहाँ लफ्जों की जरूरत कम पड़ती है और एहसास खुद ब खुद समझ लिए जाते हैं, पर इसी घर के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कभी बोली नहीं जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं। ये होती हैं अनसेट एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीदें जो किसी ने क्लियरली एक्सप्रेस तो नहीं की है लेकिन दिल के किसी कोने में बस कर रहती हैं। जी हाँ, माँ को शायद कभी ये कहना नहीं पड़ता कि थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो, पर जब आप बिजी रहते हो तो उनकी आंखों में हल्का सा इंतजार जरूर दिखता है। पापा शायद कभी डायरेक्टली अप्रिशिएट ना करें पर उन्हें उम्मीद होती है कि आप के उनके सेक्रीफाइसेस को समझोगे बिना उनके बताए। भाई बहन को भी कभी वो कहते नहीं है कि तुम मेरी साइड लो, लेकिन उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जी हाँ, उनके अंदर छुपी होती है कि मुश्किल वक्त में आप उनके साथ होंगे। ये अनसेट एक्सपेक्टेशंस इतनी सटल होती हैं कि अक्सर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है जब किसी ने कहा ही नहीं तो शायद जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, लेकिन सच ये है कि घर के रिश्तों में हर चीज़ बोलकर नहीं होती है, कुछ बातें सिर्फ फील करके होती है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस बार बार इग्नोर होती हैं तो धीरे धीरे खामोशी सी घर कर लेती है जो बाद में दूरियों में बदल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी, अपनी सोच और अपनी परेशानियों में इतना उलझा होता है कि वो हर खामोशी का मतलब समझ ही नहीं पाता, और फिर धीरे धीरे एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, एक अनसेट हर्ट रिश्तों के बीच जगह बना लेता है। साइंटिफिक लेवल पर देखें तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स एक्टिवेट है। ये वही एरिया है दोस्तों जो इमोशनल पेन को प्रोसेस करता है ब्रेन में। जी हाँ, एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स। और इसलिए दोस्तों एक छोटी सी अनसेट बात भी हमें रियल हर्ट जैसा फील कराती है। अगर ये एक्सपेक्टेशंस बार बार अधूरी रह जाएं तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे रिश्तों में डिस्टेंस और एक अजीब सा इरिटेशन आ जाता है। रिसर्च ये भी कहती है कि क्लियर कम्युनिकेशन और इमोशनल वैलिडेशन इस साइकिल को तोड़ देती है, क्योंकि जब हम अपनी बात कहते हैं तो सामने वाले को समझ आती है तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाता है। पता है, कभी कभी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में नहीं होती दोस्तों, बल्कि कम्युनिकेशन में होती है। हम समझाने की जगह एज्यूम कर लेते हैं हर अरे, और कहने की जगह चुप हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, दो लोग एक ही घर में रहकर अलग अलग

फिलहाल अभी ये जो गाना है ये काफ़ी इंटेंस ट्रैक है जी हाँ, चलिए इस गाने को सुनते हैं, काफ़ी इंटेंस ट्रैक है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

चलिए आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए। सेंटेंस ट्रैक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खामोशियों ने भी अक्सर रिश्तों को तोड़ दिया, खामोशियों ने भी अक्सर रिश्तों को तोड़ दिया, जो कहना था दिल से वो लफ्ज़ों ने रोक लिया। वो समझ तो गए थे बिना कहे सब कुछ, वो समझ तो गए थे बिना कहे सब कुछ, पर हमने महसूस करवाना ही छोड़ दिया। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी की सबसे गहरी और सच्ची कहानियां अक्सर शोर में नहीं बल्कि खामोशियों में लिखी जाती है, और ये खामोशियां सबसे ज्यादा कहीं बार हमें अपने घर में ही सुनाई देती है। घर जहाँ सब कुछ अपना होता है, जहाँ रिश्तों को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर शायद वही जगह है ये जहाँ हम सबसे ज्यादा अपनों को ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं।

हम रोज नए लोगों से मिलते हैं, उनके लिए अपना बेस्ट वर्जन लेकर आते हैं, पोलाइट, पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जैसे ही बात घर वालों की आती है तो हम अपने रॉ अनफिल्टर्ड वर्जन में आ जाते हैं, अपने रियल पर्सनैलिटी के साथ जीते हैं उनके साथ, ये नेचुरल है। लेकिन कब ये नेचुरल होना केयरलेसनेस में बदल जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। बाद में बात करेंगे, वो तो समझ जाएंगे, उनका क्या है, उनको तो सब पता है, उनको क्या बताएंगे, बता देंगे कभी ठीक लगेगा तो, कल बात करेंगे। ये जो छोटी छोटी सोच होती है ना, धीरे धीरे एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। हम समझने लगते हैं कि प्यार को बोलने की जरूरत नहीं है, पर सच ये है कि हर रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो एक्सप्रेशन मांगता है। खामोशियों में भी घर वाले बहुत कुछ कह जाते हैं, माँ का चुप रहना, पापा का ज्यादा ना बोलना, या किसी अपने का सिर्फ ठीक हूँ कह देना, ये सब उन कहानियों का हिस्सा है जो शायद कभी बोली नहीं जाती है। और हम बिजी रहते हैं अपनी ही दुनिया में उन खामोश सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम प्यार नहीं करते, प्रॉब्लम ये कि हम दिखाना छोड़ देते हैं, एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। पर हर रिश्ता चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, कभी ना कभी एक छोटी सी तसल्ली जरूर जाता है, एक लफ्ज, एक नज़र, एक एहसास। और जब ये सब मिलता है ना, तो घर की वही खामोश या कहानियां बन जाती हैं, अधूरी सी, अनसुनी और थोड़ी सी दर्द भरी। जब ये सब नहीं मिलता, याद रखिए दोस्तों, एक दिन आता है जब हम खुद पीछे मुड़कर देखते हैं, सोचते हैं काश थोड़ा और वक्त दिया होता, काश उनकी बातें सुन ली होती, काश एक बार और पूछ लिया होता कि आप ठीक हो। पर हर काश के साथ वक्त थोड़ा और दूर चला जाता है, इसलिए शायद अब भी देर नहीं हुई है। आज भी हम उन खामोशियों को तोड़ सकते हैं, आज भी हम सिंपल सा थैंक यू कह सकते हैं, एक झप्पी मार सकते हैं, हक दे सकते हैं, या बस उनके साथ बैठकर उन्हें ये फील करा सकते हैं कि वो सिर्फ घर वाले नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, ये वो उन रिश्तों से बनता है जहाँ प्यार बोला भी जाता है और महसूस भी करवाया जाता है। घर सिर्फ एक स्पेस नहीं, एक इमोशनल इको सिस्टम है जहाँ हर छोटी बात पर असर होता है, जहाँ हर छोटी बात का असर होता है। और अगर हमने सिर्फ समझ लिया पर महसूस करवाना भूल गए, तो फिर ये खामोशियां सच में कहानियां बन जाएंगी। फिलहाल ये बहुत ही ये एक रॉ गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुई धागा एक बहुत ही मेटाफर में इसे यूज किया गया है। जी हाँ, तो चलिए इस गाने को यूज करते हैं दिव्या कुमार की आवाज़।

मीनिंगफुल ट्रैक के बाद चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय जो है वो टिक टिक टिक खत्म होने वाला, मेरा वक्त जो है वो बस अब 3 बजे तक है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिल में जो बात थी वो लफ्जों तक ना आ सकी, दिल में जो बात थी वो लफ्जों तक ना आ सकी, खामोशियों ने फिर अपनी कहानी सुना दी, जो कह देते दिल की बात उस वक्त थी तो आज काश के लूप में हम उलझे ना होते। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, और शायद इसलिए यही हम सबसे ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं, बिना कहे ही सब समझ आ जाएगा। पर सच ये है कि जो बातें हम कह देते हैं उनकी अहमियत होती है, और जो रह जाती हैं वो कभी कभी बोझ बन जाती हैं। रोज़ की भाग दौड़ में हम छोटी छोटी चीज़ें टाल देते हैं, बाद में बोलेंगे अभी टाइम नहीं है, वो समझ जाएंगे, क्या मैं बताऊँगी या बताऊँगा तो मेरी फैमिली समझेगी, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो बताऊँ या ना बताऊँ। लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता, और फिर एक दिन दिल में सिर्फ ये एहसास रह जाता कि काश कह दिया होता। माँ पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब रिश्तों को एहसास करवाना अपने लफ्ज़ों के जरिए ज़रूरी होता है, ये इमोशनल सपोर्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, ये रिश्तों की सांसें होते हैं। जी हाँ, न्यूरो साइंस ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज करता है, ये हार्मोन्स बॉन्डिंग और इमोशनल रिलीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जो हम कह देते हैं वो सिर्फ रिश्तों को नहीं हमारे माइंड को भी हील करती है। लेकिन घर के रिश्तों में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, अजम्पशन बायस। हम मान लेते हैं कि वो समझ जाएंगे, और इसी अजम्पशन की वजह से कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। रिजल्ट इमोशनल डिस्टेंस, जो दिखता नहीं पर फील होता है। टाइम के साथ ये अनसेट बातें कॉग्निटिव लोड बन जाती है, यानी दिमाग पर एक इनविजिबल प्रेशर, और जब ये लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इरिटेशन होती है, थकान होती है, इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। इसलिए साइंटिफिकली भी ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों से बात करें। खामोशियाँ कभी कभी सुकून देती हैं, लेकिन जब वही खामोशियाँ बातों की जगह लेती है ना दोस्तों, तो रिश्तों में एक अनकही दूरी आ जाती है, जिसे ना कोई देख पाता है और ना ही कोई समझ पाता है। इसलिए शायद ज़िंदगी का सबसे सिंपल पर सबसे गहरा रूल ये है कि जो दिल में है उसे कहने से मत रुकिए, अपनों को ये महसूस करवाइए कि वो सिर्फ साथ नहीं बल्कि समझे भी जा रहे हैं, क्योंकि वक्त निकल जाता है पर कुछ बातें

0: बिल्कुल हाँ, अभी अपने चेहरे पे ना स्माइल ले आइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल है, प्लीज ले आइए स्माइल।
1: थोड़ा थोड़ा प्यार तो।
0: और इसी के साथ हमें मैसेजेस आए हैं, प्रियंका जी जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को ये राष्ट्रीय प्रेम का गीत सुनवाकर आपने उनके जन्म जयंती पर एक सच्ची भावना व्यक्त की है। आपने जो अपनी लिखी लाइन सुनाई है वो कमाल की कविता है। ऐसे में हमेशा ही कहता हूँ कि आपके पोएटिक टैलेंट के बारे में हमेशा ही मैं बात करता हूँ। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं हमें। वेल दोस्तों, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हूं, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी आपसे। शब्दों से जिसने दुनिया को एहसास दिया, शब्दों को जिन्होंने दुनिया को नया एहसास दिया, गीतों में प्रेम और मानवता का विश्वास दिया, रविंद्रनाथ टैगोर की कलम आज की रोशनी बनती है, हर पीढ़ी को सोचने का एक नया आकाश दिया है उन्होंने। और इसी के साथ मेरा जाने का बिल्कुल टाइम आ गया है, और क्योंकि इस समय हमारे सामने है हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर दीपांशी है, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ और भी आएगा। जी हाँ, आपके लिए रेडियो डॉक्टर आएगा, तो देखिएगा उनमें कौन है आपके साथ। बस इसी के साथ मैं जाते जाते कहती हूँ कि अपने घर की फ्रिक्वेंसी को फिर से ट्यून इन करें, थोड़ा सा बोलकर, थोड़ा सा समझकर, फिर महसूस करें अपने आशियाने का सुकून और अपनेपन का रिदम। स्टे ट्यून टू योर होम्स फ्रिक्वेंसी गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।

घर की दुआओं में एक सुकून बसता है। ममता का प्यार हर दर्द को छुपा लेता है। घर की दुआओं में एक सुकून बसता है। ममता का प्यार हर दर्द को छुपा लेते हैं। थकावट भरे दिन भी रोशन लगते हैं जब माँ की मुस्कुराहट साथ रहती है। और हर दिल से आज बस यही दुआ निकलता है, मदर हाउ आर यू टुडे। वेल जी हाँ दोस्तों, दैट वॉज द ट्रैक बाय मेवर्ट, मदर हाउ आर यू टुडे। आई वुड से इट्स अ ब्यूटिफुल हार्ट फेल्ट सॉन्ग दैट जस्ट यू नो कंटिन्यूज द टच द हार्ट्स विद इट्स वार्म लव एंड सिंपल इमोशंस डेडिकेटेड टू मदर्स एवरीवेयर, राइट। एनीवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, दिस इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय आवर फ्रेंड मेरो फ्रॉम फिट्ज़रो, एंड मेरो वांट्स टू लिसन टू द ट्रैक व्हेन द चिल्ड्रन क्राई बाय व्हाइट लायंस। So well, dear.

छोटी सी मुस्कान में उम्मीद रहती है, मासूम दिलों में सच्चाई रहती है। छोटी सी मुस्कान में उम्मीद रहती है, मासूम दिलों में सच्चाई रहती है। दुनिया की आवाजों के बीच कहीं खामोशी भी सवाल कर लेती है और हवाओं में गूंजता है When the Children Cry। जी हाँ दोस्तों, that was the track by White Lion, When the Children Cry।

0: वेल दोस्तों, कहते हैं कि हर धुन में एक एहसास छुपा रहता है। खामोश दिल भी संगीत में बोल पड़ता है। कभी खुशी कभी यादों का सफर बन जाता है और हर सुर दिल के जज्बात समझ जाता है। और म्यूजिक बिना अल्फाजों के भी दिल की बात कह जाता है। एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस इवनिंग्स एडिशन ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक एसएमएस रिक्वेस्ट शो। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग्स ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट एंड फॉर स्टैंडिंग इन योर वंडरफुल सॉन्ग्स रिक्वेस्ट and a heartfelt dedication. You know, every track made this evening even more special, I would say. And honestly, every bit of it was truly enjoyable. I had a great time. Before I leave you guys, I just want to remind you that right after this, it's going to be your traffic updates for the Kohima town, as well as your news headlines. And tonight we have a special program, Imperfect Harmony, happening at 5 PM Pas bajita shuru karo mala Imperfect Harmony program. Imman talented artist ekta ina mala de kotha kowale se. So you guys be supportive, share your love, share your support during that hour. All right. Number to see me tagi 1-9436-805-333. To ito time le mala guest aya time de tagi welcome kuri. Abne abhi message pathaui, questions thaki liwi, hudiwi, best wishes thaki liwi, share kuriwi, tahandwi support kuriwi. All right. Pas bajita shuru karo live interactive program se. To abne an sab ke পাঁচ বাজি দে আর লগ পাব দে আর আপনি আলা মেসেজেস খান দেওয়া রুখি দেয় ওই তো টাইম দিবি। অল রাইট, সো দ্যাট বিং স্যাড, দিস হ্যাজ বিন ইয়র আরজে ক্যানি উইশিং ইউ অল দ্য হ্যাভ আ গ্রেট গ্রেট গ্রেট ইভিনিং অ্যান্ড সি ইউ সুন, দ্যাটস 5 PM শার্প, সো ডু নট মিস আউট অন দ্যাট লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান।
1: ওয়েলকাম ট্রাগো ব্যান্ড News, music and entertainment. FM 103 megahertz.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

संगीत की बातें दिल तक उतर जाती हैं, खामोश रहते हैं महफिल भी बन जाती है। संगीत की बातें दिल तक उतर जाती हैं, खामोश रातें भी महफिल बन जाती हैं। कभी हंसी कभी यादों का सफर होता है, हर सुर में कहीं एक असर होता है। कुछ गीत पुरानी तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ लम्हे फिर से जीने सिखा देते हैं। शाम धीरे धीरे और हसीन हो जाती है जब धड़कनों को एक आवाज मिल जाती है, और फिर शुरू होता है मॉडर्न वर्ड्स।

हर बात जुबान से कहना जरूरी नहीं होता, कुछ एहसास खामोशी में भी महसूस होता है। हर बात जुबान से कहना जरूरी नहीं होता, कुछ एहसास खामोशी में भी महसूस होता है। कभी एक नजर भी काफी लगती है, कभी सिर्फ साथ ही मोहब्बत लगती है, और दिल कह देता है मॉडर्न वर्ड्स। वेल यस, हेलो हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे इवनिंग आउट हियर इन कोहिमा टाउन, अ ब्यूटीफुल इवनिंग वेयर यू नो द रश ऑफ द वीक इज स्लोली सेटलिंग डाउन, अ लिटिल मोर रिलैक्स आई वुड से, एंड अ लिटिल मोर इमोशनल टू एट टाइम्स, राइट? एंड ऑनेस्टली माय डियर लिसनर्स, दिस पार्ट ऑफ द इवनिंग फील्स परफेक्ट फॉर म्यूजिक that stays in our heart for a longer time. So, yep, you're listening to your Western Music RJ's Choice right here at your one-stop, your FM Tragopan only at 103 megahertz. And this is your radio buddy, your RJ Kenny on the mic with you. And I am going to be here till 8:45 p.m. Yes, we are with your Saturday evening edition, the last Western music show for this evening. So, wherever this evening finds you, maybe, you know, just sitting back, relaxing, maybe already, you know, getting ready to go to bed, maybe some still on the road, some maybe still cooking, some done with everything. Well, wherever and whatever you are doing right now, I'm just glad that you are here with me this evening to share this space with me, because tonight, ladies and gentlemen, it's all about songs, memories, love, and those quiet feelings that music somehow understands so well. So what I'll suggest is just sit back, relax, enjoy the evening with me, with FM Tragopan, and with this playlist.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवी की संख्या घटकर

0: 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से

0: मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेंट,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल।